जिसम के बांस की गुनगुना वो शर्म बिना, जिसम के बांस की गुनगुना वो शर्म बिना।